0: कडिम फतिह फस कडि 30 मिनट में दिवेहराज जेगाडो
1: अलगुन में के प्रोग्राम तंग हम जीफा वागतुं दिन गेनस्तेनी कीरत कुरान के दिवे तर्जमा कीरत कुरान के दिवे तर्जमा में दु गेनस्तेनी सूरतु रअद फशायगिन इस सूरत के 30 वन आयतु गेनियला तर्जमा विदाल दिवा फवनी डॉक्टर मोहम्मद हनीफ
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فرم فشاگنمي

वाशे उड़ तकाय बिम गे वेरी रसकलांगे खाक ये खलेग फान विदाल वाशे अल्लाह है खलेग फान विदाल वाशे एतकेतीग अमिल्ला नफ्सतक मम्फाय नुवता गिल्लु में दिनुम गे बारु लिबिगे नुवा तकेते एकलांगे फियवा एही तेरिं कमगा तियबै मीहुं हिफनी है ये खलेग फान विदाल वाशे लोकन मीहा आय लोला फिन्न मीहा आ हम हम वाने है ये नुवता अंदिर कमाय अलिकमा हम हम वाने है ये नुवता एवरिं अल्लाह बैवरिं तकिल्ला ए बैवरिं तंग एकलांगे हद्दवा फावा कहल एव्विसिच्चिं हदा ए देफरात के मखलूगुं एवरिन्नं एग्विवे ओलिगिं उलिं जहुनु है ये खलेग फान विदाल वाशे अल्लाह ही मुरिहा इच्चिं हद्दवा रसकलांगे अदि एकलांगे इक्का वंत बार वेरी वंत रसकलांगे।

ए कलांग उडुम फेव्वे सेवि देम वादी तवगा फेम बोडवे ए अखंड एळिगेमवा मिमवरगे मतिन ओहरिगेन दिए फहे ए फेनुगे मच्चंग अरा फणुत एया एकु उफलागेन गेन दिए आदि गहनाय नुवत हिफा गेंगुले इच्चें हेदुमा एवरें अलिफा नल्ला विरुवा मादनगे मच्चवेस ए फदा दगुई अरे ए फदाइन अल्लाह हक्काय बातलुगे मिसाल जसवते फहे मच्चं अरा फुनु दन्नाशे बेनुन्ने गुतुगा ए उकालेवि गिल्ली दनीये अदि मीसकुन्न फैदा हुरी खंता दन्नाशे फहे बिमुगा ए हरला हुन्नानेते ए फदाइन अल्लाह मिसाल जसवते।

0: हंगार
1: अंगार दो हम इंद्र कोरी इकार गढ़ फना रहे रिपीट एरे दिया गढ़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदम बार गढ़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकड़ दिवे राज्य के आडू
3: එංහා 441 kHz medium wave 890 MHz FM band
2: දිවෙහි රාජ්‍යයේ අඩු කඩිමහර හෙඳුනුවගෙන ෆනරම් net මේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ අඩු
4: අදුගේ රාජ්‍යය

हमत कोटा को तफा तो हिंग ही बनी हिंगा मनुष्य फौरे हम बिसेवे अह नमः पुरंगड़ा विष्णु दा कोटरे तिया मा एवा नहीं हम माँ पुरंग फरबल विफाहुरी कमा माँ पुरंग करने के मिविष्णे नी हमारे कमें इंगोनो नमा ऐसे नो बना हूँ ना नेता बेकार विष्णु में मिविष्णे नी हम कहाँ को बामे से जो मिकोरनी जाना है फानी फोटो फोन में नंबर हो फोटो तक कामुदिया कमा उम्मीद कोरां अरे मितेनी बराबरो साउंस कड़ीरो तासा के कंता हम जस्सम अरे कहाँ पुतती खाले बहनों में कितने उड़े निकून कमे Please try to understand. Anna ka tihavar ka faisal nudi pene.

0: यही चकर लेंगे।
1: मिस मिस कहीं ने भी ए कहीं ने भी
0: फिहुनी आई फिहुनी
1: मिस का मर कोरे अन्ना नंग आइस क्यूब भी जाएगे दक्का
0: थैंक्स
1: थैंक्स ओ मिशका आवेश वर करनु बदला तो उड़नी तांकोड़ बदला लगे उड़े बदला मिहार के अंगस एक गुद कवेस आमिले नफसा दे तेरे समाल कन देहने ही एंडवे किहने विफत मिहार मिश्ती हुन ननी
0: कामे विके नूने तांकोड़ अंगवसर वाला के उड़ेंग हदागे हम दोफी हद्दा गाड़ी वेस्ते हुने नो मर को लाएंगे हम मिहार मेरे डी कोलड़
1: नूने नूने मिश मारु कुरे आहारंग ऑफिस है गोस सेब होनी दें। देंगने का बादी के वेद मासिक के फसानी और नोंगे आहार दिया म। दें बोना एविस कमें वेज़िया आहना कुड़ा थी। कमें बेरनु वेज़ कुड़ा। दें दानी इंगे।
0: मैसेज़ वाको तो कोड़ा था वामुं दानी। बाकी तीन गड़ेरो वारु का दखामी के मैं लारे नो देनी है मैं नहीं इनमें उठा नहीं ने तेंग हम नून डाने हिंगोते कौन मे गोते व्यस हम तो ये फोटो तो फोन वन दिन बाला हट टैगे ने नूरे बेन दाम भी एक अमा एक अमा को आहारिंगे अकाउंटो का यहाँ वाले नून नाने ತಿಂಗ ಅಕೌಂಟ್ ಗ ಹುರಿಯ ಚನ್ನಗೆ ಗೆ ಬಾಕಿ ಬೆ ಹಮ ಕುರಂ ಹೆಂಗು ತಿಂ ಹದಾಣಿ ಒನ್ನಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೊತೆ ಬಪ್ಪಕ ಗೆ ಅಹಣ್ಣಲಿ ಬಿಫೋರ್ ತಂಕೊಳು ಎತ ಕೊಳು ವಿಕ್ಕಾದಾ ಗೆ ಬಿಯಸ್ ಮಿಕ ಮುಸಲಾಮೆ ಬ ಅಹಣ್ಣ ಜೇನೆ ಇತುರು ಗೊತೆ ದೆನ್ನೆ ಇಕಮ ಕು ಬಪ್ಪ ಯ ನಾಂಗ ಇಕಂ ಕುರಂ ಜೇಹೇನಿ ವಿಸ್ ಕಿಹಿನಿ ಹೇತೇನಿ ಕಿಹಿನಿ ಹತಾಣಿ

दाल वाश उड़ुतकाय बिमग वेरि रसखलांगे खाक महिये खलेग फान विदाल वाश अल्लाह है खलेग फान विदाल वाश एतकेतीग अमिल्ल नफ्सतक मंफाय नुवत गेल्लु में दिनुमग बार लिबिगे नुवा तकेते एकलांगे फियवा एही तिरिं कमगा तियबै मीहुं हिफनी है ये खलेग फान विदाल वाश लोकन मीहा आय लोला फिन्न मीहा आ हम हम वाने है ये नुवत अंदिर कमाय अलिकमा हम हम वाने है ये नुवत एवरिं अल्लाह बैवरिं तकिल्ला ए बैवरिं तंग एकलांगे हद्दवा फावा कहल एव्विस इच्चिं हदा ए देफरातु के मखलूगुं एवरिं नंग एग्विवे ओलिगिं उलिं जहुनु है ये खलेग फान विदाल वाशे अल्लाह ही मुरिहा इच्चिं हद्दवा रसकलांगे अदि एकलांगे एक्का वंत बार वेरी वंत रसकलांगे।

0: Mamma, baru have je.
1: Tariflah, seorang yang kata bunyi. Mamma ibu cik mikir mulu bang.
0: Papa, gadi je hani ye.
2: Tariflah, madu kubba dah.
3: Sonia, Debel Masha school dan dah.
4: तुम्ही ने तो कहा था कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: मामा
4: किस से भी
5: मामा फोन एक का हां मादमारे तैयार दावी तना कड़ी वाइपर कुराना
0: मामा वेस फोन का डोंटा
6: कोको Don'te kami kerja kali nule vene, deh Sonia kata.
7: Eh ni gulung tak badai kurafa dan, em gatu gawa gulung taka, em furatam iskandema.

0: ही चकर लेंगे।
1: मिस मिस कहीं ने भी ए कहीं ने भी
0: फी हूँ नहीं आई फी हूँ नहीं
1: मिस का मर कोरे अन्ना नंग आइस क्यों भी जाएगे दक्का
0: थैंक्स
1: थैंक्स ओ मिशका आयवस वर करनु बला तो उड़नी तांकोड़ बला लगे उड़े बला मिहार के ऐस एक गुद कविस आमिले नफसा दे तेरे समाल कन देहने ही एंडवे किहने विफत मिहार मिश्ती हुन ननी
0: कामे विके नूने तांकोड़ एंगा वसर वाला के उड़े घर दागे हम दोफी हद दागाड़ी वेस्ते हुने नू मर को लाएंगे हम मिहार मेरे डी कोलड़
1: नूने नूने मिश मारु कुरे आहारं ओफी हग्गो सैब होनी दें देंगने का बादिके वद मासिक के फशानी अनु इंगे आहरं दिया मा दें बोना एव्वेस कमे वेज्जिया आहना कुडा थे कमे बेनु व्यस कुडा दें दानी इंगे
0: मैसेजे वाकु तो कुडा था वामुं दानी बाकी तीन गड़ेरो वारु का दखामी के मैं लारे नो देनी है मैं नहीं इनमें उठा नहीं ने तेंग हम नून डाने हिंगोते कोम्मी गोते व्यस हम तो ये फोटो तो फोन वन दिन बाला हट्टा के ने नोरे बेन दाम भी एक अमा एक अमा को आहारिंग अकाउंट गए हावरे नून नाने तीन अकाउंट का हो रही है चलने के लिए बाकी बे हम को रंग हिंगो तीन हाथारने ओन्ना नहीं एम्मे को ते बाप्पा के गेंग हर नाली बिफोर तंकोड़ ऐतां कोड़ विक्का है लागे म्बियस मिका मसाला में वंग हर नचेरने इतुर गोते देने एक अमा को बाप्पा ये नांगा एक अंकुरन चेरने विस किन्हें हेते नहीं किन्हें हाथारनी

0: அச்சானா அச்சானா அட ப்ளீஸ் ஃபோன் உனக்கு ஆபத அச்சானா
1: மாஃப் பிரதா திகுரு வா நம்பரும் நிவகு கவா பெண்ணுடு
0: ए मैसेज करे एमी हाँ टाइम सब वागो तो हम अभी आना मिहारो मिहारा देवेंगोती हैदी अवसास प्लीज मेरे को तुम्हें को तक कबूल करे फंग मैंने बैठे ही ना ठीक हो ओके मिफार दे ठीक हो फिस कबूल कुरानी एम मे रंगड़ लोकेशन मि फोन वाणी फैसा ही फैगे नेतर नंगा दे नूकुदा के कारें उन्नानी ए कार के डिक्की अल्लाह फदे कार के नंबर की मी ओके

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुन कोरी एकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो गेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूं
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य क्याडू
3: कानूना कवायतकों मिनिमम कमा असासे हक्को तरक खातेर को दरी किया में बरका
2: कानूना गवायतकों रायी तुंगे सलामता रक्का तेरे कंकाशवर को दिली कीने
3: कानूना गवायतक हुरमेतेर कोंगी तंजेहनी कीवे
4: कानून तका गवायतक अहुलवेरवे हेलुं तेरवुमकी कोंबे फारुदेगेवेस अमिल रक्का तेरे कमशा मुळ मुजतमाओगे हमजहुमा नुहान बेनु तेरे कमे
2: कानूना गवायतक गुळेगोतुं तियाबे फुळुं बेनु वासुवाल तक जवाब केनेस तिलुमा दिवे राज्य गडुं केनेस तेनी
3: तरह
2: मेहोनीर दोहे गरेगंड नुए जहायरो स्टूडियो इन वगुतु
3: एंहा 7149 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
2: हमे कनी दिवि राज्य गडो
5: फोनी करुणा
6: अनिकास बप्पा हुट्टाली फलके लिबे हासकंदी इतुर बमुन्ने
5: मम्मा वाहक
6: युपिन लिबे हिंदु माबणुं तोलेमुं एदायरु हीबे
5: Zaham.
7: Ya hagwaddu nu kongule kannu ma.
6: Roifawa adakun Saudi Arabunye.
5: Mifada asaruga de riti wahakata Divirajje gaduge YouTube channelu miharu ados wale fere. Divirajje gaduge YouTube channel subscribe kolawa.
8: Angadi ungannadi munifoi filwa dinumuga.
9: Tedu verikam mayeko.
8: Ekwerikam mayeko.
9: Eruves Miharu ves rayitunna eku rayitunna emme gatuga Divehrajje ke adu
8: engha 7149 kHz medium wave 89 MHz FM band